0: fearful.
1: अगर तुम्हें आसूदगी हासिल हो तो उनको बुरी लगती है, और अगर रंज पहुंचे तो खुश होते हैं, और अगर तुम तकलीफों की बर्दाश्त और उनसे किनाराकशी करते रहोगे तो उनका फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान न पहुंचा सकेगा। ये जो कुछ करते हैं खुदा उस पर इहाता किए हुए है।

और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं मुआफ फरमा, और हमको साबित कदम रख और काफिरों पर फतह इनायत कर।

और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है।

0: खुदा उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर खुदा मेहरबानी करता है और वो सब कुछ जानता और हिकमत वाला है।
1: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

0: और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करना चाहो और पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना, भला तुम नाजायज तौर पर और सरीह जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे।
1: वकैफ

और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और खुदा की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: Welcome back, listeners. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. सामेईन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को देख रहे थे. सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. सर, आपने ब्रेक पे जाने से पहले ई कॉमर्स के बारे में बताया कि बहुत ज्यादा बूम आ गया है COVID-19 के बाद. सर, बिजनेसेस किस तरह इस रेवोल्यूशन से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरह मुतासिर हो रहे हैं?
2: जी, ये डेफिनेटली मुतासिर भी हो रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी बेटर भी हो रही है. अगर हम देखें लोकल, अगर कोई बिजनेसेस हैं उसके अंदर, और जो अब आईटी की इस दुनिया में जो रेवोल्यूशन आ रहा है, जो ऑनलाइन जा रहे हैं जो आपके बिजनेस, तो उसमें बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है. लेकिन लोकल जब तक अपने आप को शिफ्ट नहीं करेंगे टू दी ई कॉमर्स या ऑनलाइन कोई वेबसाइट नहीं बनाएंगे, तो वो फिर डेफिनेटली यहाँ पे लैग करेंगे. अभी जो डाटा के स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें अगर हम देखें, अलीबाबा के बाद अलीबाबा ने एक्वायर कर लिया इस वक्त दराज को, और दराज की इस वक्त ट्रैफिक जो है वो सबसे लीडिंग ट्रैफिक है पाकिस्तान के अंदर. और इवन अगर हम बात करें यूए की और बात करें यूके की, यूएसए की, तो वहाँ पे इस वक्त डोमिनेटेड है अमेज़ॉन. ठीक है, तो जिस वक्त अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया, डेफिनेटली फिर आपका दराज जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएगा, ऑल्दो वो अलीबाबा का पार्ट है.
1: बिल्कुल सर. अच्छा सर, अभी हमने देखा कि मुतासिर किस तरह हो रही है. क्या फायदा उठा के अपनी बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपनी एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सकता है?
2: जी बिल्कुल. जितनी भी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, अपने डाटा का एनालिसिस करती हैं. और डाटा एनालिसिस कैसे होता है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी या कोई सर्विस किसी को डिलीवर करते हैं, तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई फीडबैक देते हैं, और उस फीडबैक की बेस के ऊपर फिर कंपनीज उसका एनालिसिस करती हैं, जिसमें डाटा माइनिंग, डाटा एनालिसिस टूल्स हैं, जिसके ऊपर रहते हुए आप अपने ही कस्टमर्स को एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कितने परसेंट जो हैं हमें बेस्ट रिव्यूज़ दे रहे हैं और कितने हैं जो नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं. तो एनालिसिस करते हैं इन रिव्यूज़ की बेस पे, और उसके बाद फिर अपने प्रोसेसेस को वो रीअलाइन करते हैं ताकि उससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो और उनके जो टॉप लीडिंग जो दूसरे ब्रांड्स हैं या दूसरी कंपनीज हैं उनको फिर वो कम्पीट कर सकें.
1: सर, अभी आपने बात की है कि बिजनेसेस हैं या इंडस्ट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव कर लेना चाहिए. तो अगर सर हम बात करते हैं कि इसकी तरफ ट्रांसफ़र करने की या अडॉप्ट करने की, तो कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है?
2: जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है अपने इदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें आपको आपकी पूरी टीम को एजुकेट करना होगा, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज

0: करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप उसको ऑनलाइन कोई प्रेजेंस उसकी क्रिएट कर दें, कोई डिजिटल आप कोई पेजेस बना दें, सोशल मीडिया पेजेस बना दें, उससे ये काफ़ी नहीं होगा।
1: प्रॉपर अवेयरनेस उसके लिए
0: जी बिल्कुल, उसकी प्रॉपर अवेयरनेस आपको करनी पड़ेगी अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने लोगों को यानी एम्प्लॉयज़ को आपको ट्रेन करना होगा, हर डिपार्टमेंट के अंदर उसके रिस्पेक्टिव जो कोर्सेज हैं वो करवाने होंगे, और उनको फिर उसी तरह डिजिटली उनको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना के देने होंगे जिसके ऊपर वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फाइनली फिर आप जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
1: सर जब हर चीज़ ही ऑनलाइन हो रही है, इतना रेवोल्यूशन आ गया है, तो सर साइबर सिक्योरिटी का क्या किरदार है इसमें?
0: जी बिल्कुल, जब हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं डेफिनेटली हम डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम अपना सारा डाटा रखवा रहे हैं, वहाँ पे हमारे वेयर हाउसेज होंगे जिसके अंदर डाटा होगा, या क्लाउड के ऊपर आपका डाटा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है, आपका डाटा जो है वो लीक हो सकता है, डाटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इस तरह के मेजर्स करने पड़ेंगे जिसे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। अभी रिसेंटली UCP ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है BA साइबर सिक्योरिटी, तो हम ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार करें जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पूरी महारत रखते हों, और उसको फिर जो है आप अपनी कंपनीज के डाटा को, अपने सर्वर्स को, उसको प्रॉपर सिक्योर कर सकें बाय यूजिंग दीज स्किल्स।
1: सर जब हर तरफ बड़े बड़े बिजनेस जाइंट या टेक जाइंट्स की हम बात करें, डिजिटल वर्ल्ड में हर तरफ ये छाए हैं, तो सर छोटे बिजनेस या जिनका स्टार्टअप हुआ है वो किस तरह कम्पीट कर सकते हैं?
0: जी अब से पहले ये था कि जितने भी बिजनेसेस थे वो सब के सब जो हैं वो टाइकून थे, और कोई लोकल मार्केट के अंदर कोई भी उनको जो है वो बीट नहीं कर सकता था, सोचता भी नहीं था इवन। तो इसको अगर आप आज के दिन में अगर आपने बीट करना है किसी भी बिजनेस को उठा के देख लें आप, तो जस्ट आपको क्या करना है, अपनी पूरी प्रेजेंस क्रिएट करनी है और कैंपेन्स अपनी चलानी है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी ऐसा करना है। इवन आपको कोई इतना ज़्यादा स्पेंस की भी ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करें कि जिस तरह अगर हम बात कर लें किसी भी ब्रांड की, आज के दौर में क्या है कि आप सिर्फ एक डिजिटल वेबसाइट बनाएं, अपने सोशल मीडिया जो हैं वो पेजेस बनाएं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ज़रूरी नहीं कोई बिजनेस की बात करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है
1: जी।
0: तो वो कोई लीड क्रिएट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ कोई कैंपेन डिजिटली अवेयर करें, और उसके बाद फिर आप कोई कन्वर्जन की कोई कैंपेन्स वगैरह चलाएं, और फाइनली आप उससे कोई ना कोई लीड एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा उसके अंदर एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने ये फ़ायदा दिया है कि कोई छोटा बिजनेस भी कम्पीट कर सकता है किसी बड़े टाइकॉन को।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। हमारे साथ रहिएगा।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस को मूव कर जाना चाहिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ।
1: जी।
0: तो सर, इस सूरत हाल में एम्प्लॉइज़ को क्या स्किल सीखनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर रेडी रह सकें या जो अब नया उनका बिजनेस के अंदर चेंज आया है उसके साथ कॉप अप कर सकें?
1: जी बिल्कुल। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वो एम्प्लॉइज़ को अपने स्किल्स को रिवाइव करना है। तो ये डिपेंड करता है, अगर तो डिजिटल मार्केटिंग की बात करें या सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें या वेब डेवलपमेंट की बात करें, तो जो रिस्पेक्टिव फील्ड है उसके अंदर अपने अपने टूल्स अवेलेबल हैं जो AI सपोर्टिव हैं। तो वक्त के साथ साथ जितने भी आपके टूल्स हैं या जितने भी टेक्निक्स हैं या जितने भी फॉरम्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी अपडेट्स आती रहती हैं। जैसे अगर हम फेसबुक के डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो उन्होंने एक कोर्स अपना दिया हुआ है ब्लूप्रिंट के नाम से। तो ब्लूप्रिंट के अंदर आपके सारे के सारे नए फीचर्स, नई अपडेशन उसके अंदर आती रहती हैं, जिसे आप वक्तन फवक्तन नए से नए जो लर्निंग है वो उसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें किसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और इस तरह की जो डिपार्टमेंट है उसकी बात करें, तो फिर डेफिनेटली आपको उन टूल्स को भी देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। जबकि ये बहुत बड़ा थ्रेट भी समझा जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि जी अब AI अगर आ गया है आपके इस फील्ड में, तो फिर वो इसकी जॉब, जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या कोई कॉन्टेंट क्रिएटर है, तो उसकी जॉब को वो जो है वो डिक्लेयर कर जाएगा। तो जितने भी अब ये कंटेंट क्रिएटर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, इनकी जॉब को ख़तरा है, लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको वक्तन फवक्तन अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। जैसे अभी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो बहुत हॉट फील्ड है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो अब से पहले खुद से कोई क्रिएटिव्स बनाता था। अब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉम्प्ट आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर आप कोई ना कोई AI इमेजेस या कोई भी आप मॉडल से कोई स्केच करवाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं।
0: सर, अभी आपने AI की बात की है, तो मैं चाह रही थी कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में AI का क्या रोल है।
1: जी बिल्कुल, AI जो है वो इस वक्त की बहुत हॉट डोमेन है और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, अब हम इस सदी के अंदर सबसे हाईएस्ट या पीक फैक्टर है जिसके ऊपर हम इनक्लाइंड हैं। तो हमारी ग्रोथ जो है वो इस वक्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और उसमें AI का बहुत किरदार है। अगर हम ऐसे काम जो ह्यूमन डिपेंडेंट हैं, तो उसे अगर हम एक महीने में अचीव करते हैं, तो विद इन सेकेंड्स हम वो काम AI से विद इन सेकेंड्स जो है वो करवा सकते हैं।
0: सर, अगर हम एकेडेमिक्स की बात करें, तो हमारे स्टूडेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं?
1: देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके डिपार्टमेंट्स और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने अपने इनिशिएटिव्स हैं। जैसे अभी कोरोना आया था तो सब यूनिवर्सिटीज़ LMS के ऊपर मूव कर गई और उन्होंने ऐसे जो है इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना दिए। इवन अभी भी हमने एक रिसेंटली, आई थिंक एक दो साल पहले, एक प्रोग्राम करवाया था, एक टॉक थी, वर्कशॉप थी, जिसके अंदर ChatGPT इज बैन आर बॉर्न, ये शायद उसका टाइटल था। तो अब स्टूडेंट्स को आप नहीं रोक सकते किसी भी एस्पेक्ट के अंदर के जी आप AI का यूज़ ना करें या ChatGPT का यूज़ ना करें, तो उसने अल्टीमेट आपकी असाइनमेंट्स और उसकी जो क्विजेस की प्रिपरेशन वो सारी चीज़ें AI से करवानी है।
0: सर, असाइनमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा उसमें तो हेल्प लेते हैं, पूरे पूरे असाइनमेंट्स वहाँ से उठा लेते हैं बनवा के।
1: जी बिल्कुल। तो अब उसके लिए फिर आपको कुछ इस तरह के फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि जिसके ऊपर आप उसको टेस्ट कर सकें। आप कोई क्लास के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ रखें कि जो असाइनमेंट्स आपने AI बेस्ड अगर स्टूडेंट ने जो है वो सबमिट करवाई है, तो आप उसके ऊपर उनसे एनालिसिस कर लें, उनसे बात कर लें, उसके ऊपर ओपन कम्युनिकेशन रख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से प्लेजराइज्ड है और कौन सा नहीं है।
0: सर, हेल्थ केयर में भी कुछ फ़ायदा हो रहा है हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का?
1: जी बिल्कुल, हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गई है फील्ड मेडिकल साइंसेज के अंदर। इवन जितने भी ट्यूमर्स डिटेक्शन और जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको इसी तरह से ही एनालाइज किया जाता है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि इसकी इमेज ली जाती है किसी भी ट्यूमर की और उसको फिर एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग दीज एल्गोरिदम्स जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं और जो AI के पार्टिकुलर बॉट बनाए जाते हैं और इवन फिजिकली बॉट भी बनाए जाते हैं जिसको आपको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना होता है और फिर वहां से फिर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती है और इस तरह से डिटेक्शन हो रही होती है।
0: सर जब हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं तो क्या रिस्क सामने आते हैं और अगर कोई इस तरह के रिस्क आ जाते हैं तो फिर उनको किस तरह मैनेज किया जा सकता है?
1: देखिए रिस्क पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि अगर आप टोटली शिफ्ट कर जाते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर और आपके पास फिजिकल कोई रिकॉर्ड नहीं है तो डेफिनेटली आप डाटा लॉस और इस तरह की चीज़ों के यानी डाटा ब्रीच इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपको डेफिनेटली ऐसी सर्विसेज को एक्वायर करना पड़ेगा जो आपके डाटा की प्रोटेक्शन डाटा के लॉस से आपको बचाए यानी आपको कोई बैकअप्स रखने पड़ेंगे या फिर आपको कोई साइबर सिक्योरिटी ताकि कोई थर्ड पार्टी आपको अटैक ना करे। तो क्योंकि आपके जो कंपटीटर्स हैं डेफिनेटली आपको वो ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते
0: जी सर।
1: तो इस अटैक्स को बचाने के लिए आपको फिर कोई पेड सर्विसेज लेना पड़ेंगी तो ये हो सकता है इसके अंदर।
0: आज के प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही हम अपने ऑनरेबल गेस्ट सर उमर राना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
1: जी आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने हमें मदद किया इस रेडियो प्रोग्राम के अंदर।
0: आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز ایک نئی
3: سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए
4: السلام علیکم سامعین پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف اور منزل میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں جو آپ کو انسپائر کر سکیں جو آپ کی زندگی کے ٹاسک ہیں گول ہیں ان کو اچیو کرنے میں ہیلپ کر سکیں ان کی لائف کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی سٹرگلز کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ اور میں انسپائر ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف جو روا دواں ہیں ان میں اپنی کچھ لرننگ لے سکیں کچھ ایسی چیزیں ہم جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکیں ان کی لائف کو ڈسکس کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بھی منزل کو حاصل کیا ہے انہوں نے محنت کی ہے کوشش کی ہے اور کنسسٹنٹ رہے ہیں اور اسی طرح کی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمر بھٹی جو ہیں وہ ایک یوتھ آئیکن ہیں اور احمر نے چھوٹی سی عمر میں بہت سارے کام کیے ہیں انہوں نے کینیڈا کی ٹاپ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے سی ایس ایس کیا ہے اور آج کل یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور اپنی جو انرجیز ہیں ان کو ملک کی بہتری کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں تو ہم سارے ان کی شخصیت کے پہلو جاننے کی کوشش کریں گے بھٹی صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہماری یونیورسٹی آ کے ہمارے اسٹوڈیو آ کے
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور آپ کے سامعین سے بات کرنے کا موقع دیا یہاں میرا یہ پہلا ریڈیو انٹریکشن ہے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے
4: یونیورسٹی کا انوائرمنٹ آپ کو کیسے لگا حالانکہ آپ کو یونیورسٹی بھی ہم نے دکھانی ہے لیکن ہماری آپ باہر سے گزرے ہوں گے پہلی دفعہ میرے خیال سے آپ ہماری یونیورسٹی میں آئے ہیں اسٹوڈیوز میں آئے ہیں
5: جی بالکل میری یہ پہلی دفعہ آپ کی یونیورسٹی میں اور میں باہر آتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہاں پہ ماشاء اللہ بڑی رونق ہے اسٹوڈینٹس کافی چہل پہل میں پھر رہے ہیں اور آج موسم بھی بڑا اچھا ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈینٹس باہر گھوم پھر رہے ہیں آپ کی پڑھائی کے بارے میں تو میں کچھ کامنٹ نہیں کر سکوں گا چونکہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا خوشگوار ماحول میں یہاں پہ بچے گھوم پھر رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے
4: بالکل ٹھیک آپ نے ویسٹرن اونٹاریو یونیورسٹی میں اگر میں نہیں صحیح پرناؤنس کر پا رہا تو آئی ایم سوری وہاں پہ بھی آپ نے تعلیم حاصل کی آپ کے اس کے تجربات بھی جانیں گے لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں خاندان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں
5: میں جی لاہور کے ہی ایک چھوٹے سے قصبے کا باسی ہوں رائے ونڈ سے میرا تعلق ہے میرے والد صاحب وہاں سے دو مرتبہ ایم پی اے رہے ایڈوائزر ٹو سی ایم بھی رہے ہوئے جب منظور بٹو صاحب ہمارے صوبے کے حکمران تھے ان کے مشیر تھے میرے والد صاحب عبد الرشید بھٹی ان کا نام ہے اور ان کی ایک بڑی یونیک آئیڈینٹی ہے ہمارے صوبے میں کہ وہ اسمبلی میں دھوتی کرتا اور پگ پہن کے جایا کرتے تھے جو کہ ہمارے ثقافت کا ایک
4: جو بیسکلی ہماری ٹرو پنجاب کی کلچرل ریپرزینٹیشن
5: جی بالکل ہماری شناخت ہے جو کہ لیکن بدقسمتی سے آہستہ آہستہ ہم نے کھو دیا اس شناخت کو یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا میرا خیال ہے کہ پچھلے سال آپ کے یہاں پہ ایک کانسرٹ ہوا تھا پنجابی سنگرز آئے تھے یہاں پہ
4: جی جی
5: تو وہ فیس بک پہ مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا تو میں نے بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا اس وقت کہ یہ ہماری ثقافت کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے
4: بالکل ٹھیک تو بٹی صاحب ارلی اسکولنگز آپ کی ادارے کا نام آپ نہیں لیں گے ارلی اسکولنگ جو ہے آپ کی کہاں پہ ہوئی اور کیسے آپ نے اپنی یونیورسٹی تک کی اپنا سفر ہمارے ساتھ شیئر کریں
5: ادارے کا چونکہ آپ نے کہہ دیا نام نہیں لینا تو اسکولنگ میری لاہور کی ہے موسٹلی اے لیولز تک میں نے یہاں لاہور میں ہی پڑھا ए लेवल्स के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी कनाडा में, तो मैं कनाडा पढ़ने के लिए चला गया। चार साल की वहां से मैंने ग्रेजुएशन की फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके बाद फिर वापस आए। वापस आके यहाँ पे मैंने सीएसएस किया।
4: ठहर जाएं भट्टी साहब, आपने वो चार साल बड़े जो हैं बिल्कुल आपने रैप अप कर दिए। तो पहली बात तो स्कॉलरशिप हासिल करना और बैचलर्स लेवल पर स्कॉलरशिप हासिल करना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो अपने कुछ क्योंकि दुनिया के जो टॉप इकॉनमीज हैं उनमें कैनेडा है और कैनेडा से आपने तालीम हासिल की है, तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के कुछ तजुर्बात हमारे साथ शेयर करें कि कैसा वहाँ पे आपका एक्सपोजर बना, कैसे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे रहे।
5: एक्सपोजर के हवाले से अगर बात करें और एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। अगर मैं कनाडा नहीं जाता या कुछ और भी होता, ये काउंटर फैक्चुअल है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर मैं पाकिस्तान में रह के पढ़ता तो शायद जो जिंदगी में रस्ते मैंने इख्तियार किए वो मैं ना कर पाता। तो मैं समझता हूँ वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी, और बल्कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था पूरे चार साल का। वहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखा, वहाँ के माशरे के बारे में बहुत कुछ सीखा, फिर एक और मौका मिला अपने माशरे को उनके माशरे से मवाजना करने का। तो जो कुछ वहाँ से सीखा उसके बाद जब वापस आए, बहुत कोशिश कर रहे हैं तब से लेकर अब तक कि जो लर्निंग्स वहाँ से हमने हासिल की उनको यहाँ पे आके लोगों को उसका शऊर दें, और कोशिश करें कि जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौका दे तो उनको इम्प्लीमेंट भी करें।
4: अच्छा अहमद साहब, जो बुनियादी फ़र्क आपने क्या महसूस किया, आपने यहाँ भी टॉप इदारों में आपकी स्कूलिंग थी, आप यहाँ के एक्सपोजर भी रखते थे, तो वहाँ पर बुनियादी आपको क्या डिफरेंस नजर आया
5: तालीमी लिहाज से?
4: तालीमी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से?
5: देखिए मुआशरती लिहाज से तो वो बहुत ही मुख्तलिफ लोग हैं हमसे, मेरी बात है, आपको भी इन चीजों का अंदाजा है जिस तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ। तालीमी मयार उनका हमसे बहुत बेहतर है। दूसरी चीज जो मैंने एक बड़ी यूनिक वहाँ पे महसूस की, वहाँ पे जो उनका एजुकेशनल एनवायरनमेंट है वो बड़ा फ्रेंडली है। मसलन उनका टीचर स्टूडेंट जो रिलेशनशिप है वो बड़ा यूनिक किस्म का होता है। वो जैसे हमारा यहाँ पे एक बड़ा रवायती अंदाज है उसातजा का, वो वहाँ पे रवायती अंदाज से नहीं पढ़ाते, वो आपको बड़े दोस्ताना माहौल में इनकरेज करते हैं आपको पढ़ने के लिए, फोर्स नहीं करते, आपका दिल करता है पढ़ने को, चीजें सीखने को दिल करता है। बेसिकली इसको अगर मैं एक जुमले में कहना चाहूँ तो वो आपको सिखाते हैं पढ़ाते नहीं। आप नई नई चीजें सीखते हो थ्रू योर एक्सपीरियंसेस।
4: तो क्या आपकी, जिस तरह आपने बड़ी जबरदस्त अभी बात की कि वो आपको इंस्पायर करते हैं सीखने के हवाले से और रटा को डिस्करेज करते हैं, रटा सिस्टम को और ये सारी चीज को, तो कुछ आपके ऐसे कोई वाकयात वहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारी एक रेस होती है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रेड्स, ए ग्रेड्स लेने हैं या मैक्सिमम स्कोर करना है, और ये वाला पेशा डॉक्टरी इंजीनियरिंग या इस तरह के पेशे अख्तियार करने हैं, तो आपकी कुछ ऐसे वाकयात जो आप समझते हो कि जिसमें वाकई आपने इंस्पायर हुए हों उनके मेथड से, उनके उनके तरीकाकार से?
5: बेशुमार चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा एक वाक्य ऐसा जो शायद आपके सामने बड़े लुत्फंदोज भी हों और कुछ इससे शायद अग्री ना करें। कल्चरल डिफरेंस की बात मैं करना चाहूँगा यहाँ पे। मैं चूंकि यहाँ पे भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं कोई इतना हार्ड वर्किंग या इतना कोई मेहनती स्टूडेंट नहीं था, मैं सिर्फ एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा। लेकिन गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड टू मी कि मुझे अच्छे मौके मिल गए सही टाइम पे, तो मैं आगे बढ़ता गया। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे एक दिन में तीन एग्जाम्स देने पड़े एक दफा, ना सेकेंड ईयर में मेरे ख्याल से। तो मैंने चूंकि अपनी जिंदगी में कभी इतना ना पढ़ा था, ना ही इतनी कभी मेहनत की थी इस शोबे के लिए, तो वो तीन एग्जाम एक दिन में देना बड़ा मुश्किल लगा मुझे। तो मैंने मेरे जो सीनियर थे वहाँ पाकिस्तानी, मैंने उनसे मशवरा किया, मैं कहा यार मुझे बताओ कि मैं तो तीन एग्जाम एक दिन में नहीं दे सकता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो क्या हाल है इसका। उन्होंने मुझे इसका एक पाकिस्तानी जुगाड़ बताया जो हम अपनी देसी जुबान में कहते हैं। तो मैंने एक वहाँ पे जाली डॉक्टर्स नोट बनवा लिया एक डॉक्टर से, जो कि बड़ी हैरान कुन बात है, शायद आपके सामने को भी ये बड़ी शॉकिंग लगे कि वहाँ पे लोग आमतौर पे ये प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं गया एक डॉक्टर के पास, वहाँ पे जाके उसको मैंने बहाने बुने बना के उससे किसी तरह से डॉक्टर्स नोट एक ले लिया। खैर एग्जाम मेरा डेफर हो गया, तो मैंने एक दिन में एक ही एग्जाम दिया लेकिन बाकी दो एग्जाम्स मेरे डेफर हो गए। अब यही वाकया मैंने अपनी एक क्लास में नरेट किया, मेरे एक टीचर थी वहाँ पे, हमारी पब्लिक स्पीकिंग की क्लास हुआ करती थी, तो उस पब्लिक स्पीकिंग में एक दिन मुझे प्रॉम्प्ट स्पीच करनी थी, तो उसमें मैंने जब ये वाक्या नरेट किया तो बिलीव यू मी देयर वर 28 स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, नन ऑफ देम कुड बिलीव मी कि ऐसा भी हो सकता है इस मुल्क में कि आप एग्जाम जाली डॉक्टर्स नोट बना के डिफर करवा सकते हैं। उनके लिए ये बहुत ज्यादा अचंभा जैसी बात थी। तो हमारे तो यहाँ पे आम रूटीन की बात है, और बाकी हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त थे वहाँ पे उनके लिए भी एक आम रूटीन की बात थी, वो यकीन ही नहीं कर रहे थे। तो मुझे वहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन आई कि इन लोगों में, और हम लोगों में फर्क क्या है। उनकी परवरिश और उनकी तरबियत ही इतनी बेहतरीन की जाती है कि उनको उल्टे सीधे रास्ते का फर्क बचपन से सिखा दिया जाता है, और कोशिश करते हैं उनके वालदैन, उनके उसाचा, उनकी कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी कि उनके बच्चे, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो उल्टे रास्ते पे ना जाएं, जिस वजह से उनको पता ही नहीं था उस रास्ते का। उनके लिए वो बिल्कुल नई चीज थी जो मैंने उनके साथ शेयर की। तो उस दिन के बाद से मैंने फिर कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि मैं भी आइंदा ये काम यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये माशरा हमारा जैसा हमारा माशरा है वैसा ये माशरा नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैंने रहना है और इस माशरे में अगर मैंने एक्सेल करना है तो इसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मुझे चलना पड़ेगा। यहाँ जितनी मेहनत करके बाकी सारे लोग आगे जा रहे हैं, मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। तो वो चीज़ एक रियलाइजेशन जो थी वो बड़ी काम आई बाद में। फिर उसके बाद बहुत सारा काम किया, बड़ी मेहनत की और बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज में एक्सेल भी किया फिर बाद में।
4: जी सामिन, अहमर भट्टी साहब की दिलचस्प गुफ्तगू से हम महसूस हो रहे हैं और आपको भी हमने महसूस करते रहना है। इंफोटेनमेंट के साथ साथ आपको हमने इंटरटेनमेंट की तरफ भी लेके जाना है, और इंटरटेनमेंट के लिए अभी लेने जा रहे हैं म्यूजिक ब्रेक। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अहमर भट्टी साहब से जानेंगे कि CSS का ख्याल क्यों आया और CSS करने के बाद उसे छोड़ने का क्यों ख्याल आया, क्योंकि हमारे यहाँ जो एलीट जॉब समझी जाती है वो CSS ही है, तो क्यों CSS से इन्होंने किनारा कशी की और आजकल क्या कर रहे हैं। सारी बातें हम जानेंगे म्यूजिक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।

0: बहुत ज्यादा दुराने एग्जाम्स, तो बहुत से लोग कॉफी पीते थे। तो मैंने जब देखा कि ये हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम कॉफी पीते हैं जागने के लिए, जो वहां के लोकल मुकामी लोग थे वो भी पीते थे, लेकिन वो सेब ज्यादा खाते थे। तो मैंने पूछा भी उनसे और फिर मैंने इस बारे में पढ़ा भी कि सेब जो है वो आपको उतनी ही एनर्जी देता है जितना कॉफी का आपको ग्लास देता है। तो बजाय कि आप कॉफी पिए या कोई और चीज इसका मुतबादल इस्तेमाल करें, बेहतर है कि आप सेब खा लें।
1: स्टिम्युलेटर या एनर्जाइजर के तौर पर सेब का इस्तेमाल, ये मैंने भी पहली बार सुना और यकीनन हमारे सामईन के लिए भी ये नई बात होगी। अहमद भट्टी साहब, आप वहाँ से तालीम हासिल करके पाकिस्तान आ गए, जिस तरह कि हम मजामीन में भी पढ़ते हैं कायदे आज़म और इलामा इकबाल के, कि आपने आला तालीम इंग्लिस्तान से हासिल की, तो आपने आला तालीम कनाडा से हासिल करने के बाद आप वतन वापस आ गए, तो CSS का ख्याल कैसे आया? अमूमी तौर पर हमारे यहाँ CSS जो है वो एक टेक वाली जॉब या एक कह लें कि वो, तो टेक का ही आपकी इंस्पिरेशन थी CSS में?
0: अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बात, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये कुछ ऐसी बातें जो पहले मैंने कभी इस तरह से खुल के की नहीं, या बल्कि कभी किसी ने पूछी नहीं। तो आप चूंकि
1: इस्तेसार कर रहे हैं,
0: तो मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मेरी उस वक्त फीलिंग्स थी। मैं कनाडा गया ही CSS की वजह से था।
1: अच्छा,
0: मेरी जो इंस्पिरेशन थी कनाडा जाने की, क्योंकि मैं एक देहाती आदमी हूँ, तो अंग्रेजी अंग्रेजी आपको पता है देहातों के जो पढ़े लिखे लोग भी हों तो उनको भी इतनी आती नहीं है। हालांकि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे लाहौर के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में थी, लेकिन वो हिचकिचाहट और वो कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं था। तो मैं जब सोचता था कि मैंने CSS करना है, तो उसमें सबसे बड़ी जो एक रुकावट मुझे नजर आती थी वो अंग्रेजी थी। तो मैंने सोचा इसका क्या हल है। मैंने हालांकि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ा हुआ था, लेकिन बोलनी नहीं आती थी। समझ लेता था, पढ़ लेता था, लिख लेता था बड़ी अच्छी, लेकिन बोल नहीं सकता था। तो कुदरत ने फिर मौका भी दे दिया, वो स्कॉलरशिप भी हो गई। तो मैंने उसको फौरी तौर पे अवेल किया कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो वहाँ पे जाके तो मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी लाजमी तौर पे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ पे जब गए तो दोस्त ऐसे मिल गए जो पाकिस्तानी थे सारे, उनके साथ वहाँ पे जाके फिर वही उर्दू और पंजाबी
1: में अपना गाँव आबाद कर लिया,
0: ऐसी कह लें आप। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कैफेटेरिया में जब ऑर्डर करने जाता था, तो मेरे साथ दोस्त होते थे अक्सर, तो वही मेरा ऑर्डर करते थे। मैं सिर्फ चाहता रहता, कॉन्फिडेंस नहीं था बात करने का, तो मैं ऑर्डर भी नहीं करता था खुद। तो मेरा दोस्त ही कोई ना कोई जो साथ होता था उसको मैं कहता था यार ऑर्डर कर दो। तो एक मेरा दोस्त है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, ज़ैन रंधावा, जिसका बड़ा अहम किरदार रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो उसने मुझे ये रियलाइज़ बात करी, उसने कहा यार तू, डेढ़ साल हो चुका था उस वक्त मुझे, तो मैं अंग्रेज़ी बिल्कुल तब तक नहीं बोलता था। तो मुझे उसने कहा यार तू यहाँ पे आके भी अगर अंग्रेजी नहीं बोल रहा तो कब सीखेगा बोलना, आज तू अपना ऑर्डर खुद करेगा। तो वो पहला दिन था जब मैंने अपना ऑर्डर भी खुद किया अंग्रेजी में, और उसके बाद फिर मैंने वो पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कि आपको पहले भी बताया, उसकी कोचिंग भी ली, क्लासेस भी ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ बोलनी भी आ गई, लिखनी पढ़नी तो पहले ही आती थी। तो मैं आपको बता रहा था इंस्पिरेशन मेरी कनाडा जाने की भी यही थी CSS। CSS आपने जो सवाल किया कि मैं क्यों करना चाहता था, जैसे कि आपने कहा हमारे माशरे में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अक्सरियत कोई भी काम जो करते हैं ना, हमारा पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होती है कि मैं इसको क्यों करना चाहता हूँ। मेरी मोटिवेशन भी वही थी जो मेजॉरिटी की यहाँ पे होती है, टैका। उस वक्त तो मोटिवेशन यही थी कि टोर टप्पा होगा, टैका होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चीज़ें समझ आना शुरू हुई, शौर बढ़ा, तो समझ आई कि ये जो हमारा मकसद है या जो हमारी मोटिवेशन है ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। जिसकी वजह से बाद फिर मैंने छोड़ भी दी अपनी सर्विस 7-8 साल करने के बाद। तो मोटिवेशन इनिशियल तो यही थी।
1: ये आपने मतलब बड़ी आसानी से कह दिया कि छोड़ दी, क्योंकि ये आप जिस तरह, आपको तो इस बात का बेहतर आइडिया है कि हमारी जितनी भी वैसे ख्वाहिश तो हमारी को 90% स्टूडेंट्स की होती है कि वो CSS के एक दफ़ा अटैम्प्ट ज़रूर दें, और जो लोग अटैम्प्ट देते हैं उनमें से 1% लोग होते हैं जो इसको कर पाते हैं। तो आप ने वो जो 1% में आना पहले, तो यानी कि आप जो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो छोड़ना उसमें फिर मुआशरा, आपके घर वाले, आपके यार दोस्त आपको समझाते हैं कि यार इतनी अच्छी जॉब है, ना छोड़ना, ना शुक्री के ज़ुमरे में आएगा, ये होगा। तो ये छोड़ना कितना आसान या कितना मुश्किल था?
0: देखें डॉक्टर साहब, CSS जो मैंने किया ना, पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने ऐसे ये नौकरी हासिल की होगी जैसे मैंने हासिल की। मैंने इसके लिए बहुत तगोदो की, बहुत मेहनत की। ये स्टोरी लंबी हो जाएगी अगर मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैं बड़ी ब्रीफली आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने जब अटेम्प्ट की सी एस एस

0: कि तो हम तीन दोस्त थे जिन्होंने इकट्ठे मिलकर तैयारी की एक घर में। एक का नाम आसिम अवान है, दूसरे का नाम हसन भट्टी है। दोनों माशाल्लाह सर्विस में अपने अपनी मुकामात पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम तीनों ही क्वालिफाई कर गए रिटन एग्ज़ाम, बड़ी खुशी हुई। तो उसके बाद जब इंटरव्यू आया, इंटरव्यू की भी बड़ी तैयारी की हमने इकट्ठे मिल के, वो भी हम क्वालिफाई कर गए। तो जब फाइनल रिजल्ट आया, उन दोनों की एलोकेशन हो गई लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि हम इतना मेहनत से पढ़ा, इकट्ठे सारा कुछ किया, उनकी हो गई है। उनकी अपनी जगह पे खुशी थी लेकिन जाहिर बात है इंसान सेल्फिश है, मुझे अपना दुख भी था। लेकिन वो अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मेरे लिए कोशिश की, मेरे साथ मिलके पता किया। रीएलोकेशन में हमने तगोदौ की मिलके बहुत सारी, बड़ी मेहनत के बाद हमने रीएलोकेशन में मेरी एलोकेशन करवा ली। रीएलोकेशन में जब एलोकेट हो गए तो ट्रेनिंग में जा, वो दोनों ट्रेनिंग पे चले गए, मैं ट्रेनिंग पे नहीं गया, मैंने रीअपेयर होने का फैसला किया। तो रीअपेयरेंस के बाद जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार छोड़ो, क्या करना है नौकरी करके, तुम रहने दो। मैं कहा जी मैंने इतने साल मेहनत करके पढ़ लिख के ये नौकरी हासिल की है तो मैं ट्रेनिंग तो लाजमी करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि होता क्या है। तो खैर उन्होंने मेरे साथ इत्तेफाक किया, ट्रेनिंग की, उसके बाद नौकरी शुरू की। जब नौकरी 6 महीने मैंने कर ली, जो कि जाहिर बात है शुरू में नए नए जब आप जाते हो तो बड़ा जज्बा होता है मुल्क की खिदमत करने का, आवाम कौम की खिदमत करने का। 6 महीने के बाद जब आपको वो रियलिटी चेक मिलता है कि जो आप ख्वाब लेकर आए हो उनको शर्मिंदा ताबीर करना मुश्किल है या बल्कि नामुमकिन है इस माशरे और इस निज़ाम के अंदर रहते हुए, तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो मैंने अपने घर वालों से बात की, मेरे घर वाले जाहिर बात है आपको बताया, वालिद साहब तो पहले ही कहते थे कि ना करो, लेकिन मेरी फैमिली में मेरे चचा या बाकी फैमिली का प्रेशर था कि अभी कुछ अरसा करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो वो कुछ अरसा करते करते 7 साल गुजर गए, 7 साल लग गए मुझे दोबारा इस पे अमल पैरा होने में कि मैंने नौकरी नहीं करनी। 7 साल बाद खैर मैंने इस्तीफा दे दिया,
1: उसको खैर बात किया। अमर भट्टी साहब के साथ हमारी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है और प्रोग्राम में इस वक्त हम लेने जा रहे हैं एक म्यूज़िक ब्रेक, और म्यूज़िक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अमर साहब से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की जो टॉप सर्विस है जिसे हम CSS के नाम से जानते हैं, जब वो छोड़ दी तो क्या मोटिवेशन थी और आजकल ये क्या कर रहे हैं, और हमारी यूथ को किस हद तक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, ये सारी बातें हम ब्रेक के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is 92.6.
2: सामीन प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ और हमेशा की तरह आज भी वक्त गुजरने का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ और अहमर भट्टी साहब की शख्सियत के जो पहलू हमने डिस्कस किए वो सारे इतने दिलचस्प थे कि वक्त आज जो है वो मामूल से कुछ ज़्यादा स्पीड में गुजरा। हमने डिस्कस किया कि उनकी कैनेडा में एक्सपीरियंसिस को, एजुकेशन को, इसके अलावा हमने डिस्कस किया उनके CSS को, उनकी जॉब के एक्सपीरियंसिस को, पॉलिटिकली यूथ को कितना और कैसे एक्टिव होना चाहिए ये हमने डिस्कस किया। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हम अहमर भट्टी साहब आपसे चाहेंगे कि अपने एक्सपीरियंसिस की बुनियाद पर आप जो हमारे लिसनर्स हैं उनको कोई पैगाम दें।
3: पैगाम मैं जी ये देना चाहूँगा, मैंने 2009 में गालबन या 10 में जलजला आया था पाकिस्तान में, तो उस जलजले से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। उसी दौरान मैंने एक शेर लिखा था, वही शेर मैं आपकी नज़र करूँगा और आपके सामीन की नज़र करूँगा। मकसद रब्बी था तामीर जहाँ, मकसद रब्बी था तामीर जहाँ, के काम आए इंसान के इंसान। मैंने जो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और थोड़ा बहुत जो पढ़ के सीखा है वो यही है कि ज़िंदगी का लुब्बे लुबाव यही है, आप अपने इर्द गिर्द इंसान जो हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपनी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, आपका माशरा भी बेहतर हो जाएगा। देखें, अगर मजहबी लिहाज से बात करें तो मुझसे मेरे अमाल का पूछा जाएगा, लेकिन माशरे में रहते हुए मैं सिर्फ अपने अमाल का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मेरे ख्याल से मैं उन लोगों के अमाल का भी ज़िम्मेदार हूँ जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है या जिनकी ज़िंदगी का इन्हिसार मेरे ऊपर है। तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी लामहाला आयद होती है कि उनकी जिंदगियां मेरे से जुड़ने की वजह से बेहतर होनी चाहिए, ना कि बदतर हों। अगर मेरे साथ जुड़े लोगों की जिंदगियां बेहतर नहीं हो रही तो इसका मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तो यही पैगाम मैं अपने सामईन और आपके सुनने वालों को भी देना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे प्यार करें, उनका ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें और अपने माशरे को अपना समझें। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क किसी का नहीं है। इस मुल्क को अच्छा बनाना है तो हमने बनाना है, बुरा बनाना है तो हमने बनाना है। इसकी बेहतरी के लिए सोचें, इसकी बेहतरी के लिए अमली तौर पे काम करें। मैं सिर्फ अगर ये कहूँ कि मेरी 9 to 5 जॉब है, उसके बाद मैंने कुछ और नहीं करना, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी सेल्फिश अप्रोच होगी। मेरे ख्याल से जिस मुश्किल दौर से हमारा मुल्क इस वक्त गुजर रहा है, मिन हैसुल कौम, हमें ये चीज़ और इस चीज़ पर फैसला करना चाहिए कि हमने अपने मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। बहुत दुश्वार और मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, कम से कम हमारी ज़िंदगी का तो इस मुल्क का मुश्किल तरीन वक्त गुजर रहा है इस वक्त। तो बहसियत कौम हम सारों को चाहिए कि अपना अपना किरदार आसान तरीके से निभाए।
2: जी सामिन, बहुत ही खूबसूरत मैसेज अहमर भट्टी ने हमें दिया और इनका कहना है कि आपकी जॉब जो है वो 9 to 5 हो सकती है, लेकिन आपसे की मुल्क से मोहब्बत और मुल्क के लिए आपका किरदार जो है वो 24/7 है, और मुल्क की से मोहब्बत और मुल्क की खिदमत का पहला जो यूनिट है वो आपकी रैयत में जो लोग मौजूद हैं, आपकी ख़ानदान है, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो किसी भी कैपेसिटी में आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो फैमिली है या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके हवाले से उन लोगों का ख्याल रखना है और इसको उस सिलसिले को बढ़ाते चले जाना है और मुल्क को जो मुश्किलात दरपेश हैं उसमें आपने अपने हिस्से की शमा रोशन करनी है। तो प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगले हफ्ते इसी वक्त किसी नई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ आएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, तेरी गली में आना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया। जी जनाब, ये खूबसूरत मसूर कौन और खुश कौन आवाज़ थी हमें दुरुस्ती की, जिन्हें मैजिशन ऑफ वॉइस यानी जादू का आवाज़ का जादूगर कहा जाता है। और वाकई ही उनमें ये भी खूबी थी कि वो मुख्तलिफ परिंदों की जो आवाज़ें होते हैं ना, वो भी साउंड में रिकॉर्ड करवा सकते थे और निकाल सकते थे। जनाब, ये खासियत बहुत ही कम लोगों में होती हैं और खुदादा सलाहियतें होती हैं, ये इंसान खुद से क्रिएट नहीं कर सकता। और ये खुदादा सलाहियतें मेरे में भी मौजूद होंगी, आप में भी मौजूद होंगी, लेकिन हमें उन खुदादा सलाहियतों की तलाश करना ज़रूरी है, उनको खोजना ज़रूरी है कि जनाब कहाँ है वो। होता है ना कि छुप जाते हैं कुछ चीज़ें, हमारे सामने भी होती हैं लेकिन ओझल होती हैं, यानी नज़रों से दूर होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो नज़रों से ओझल होती हैं, उन्हें कैसे तलाश किया जाए, उसका गुण मेरे ख्याल में इंसान से बेहतर किसी को नहीं आता। तो जनाब, जैसे कि हमने इस खूबसूरत सी म्यूजिकल ब्रेक से पहले बात की थी कि नाज़िया हसन की आज 54th बर्थडे है और आज हम उनको याद कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम उनकी थोड़ी बहुत बात कर लें। उन्होंने पाकिस्तान की पॉप म्यूज़िक में बहुत आला नाम कमाया और बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने भाई के साथ बहुत, यानी जोहेब हसन ने भी उनका साथ दिया और बहुत अच्छे उन्होंने सॉन्ग्स हमें दिए। आज भी हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जोहेब हसन अब भी हम देखते रहते हैं, गाहे बगाहे जो है वो आते रहते हैं और हमें अपनी आवाज़ से जो है वो महसूस करते रहते हैं। तो जनाब, यहाँ बात हुई, हमने नाज़िया हसन की बात कर ली, हमने पॉप म्यूज़िक की बात कर ली, लेकिन अब मौका है और अब लम्हा है कि हम बात करें रिश्तों की। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बताया था कि आज हम बात करेंगे रिश्तों की, कि रिश्तों को हम संभाल कैसे सकते हैं, उन्हें बचा कैसे सकते हैं, और ये टूट क्यों जाते हैं, क्या वजह होती है कि ये टूट जाते हैं, हमसे हमारे अपने ही दूर हो जाते हैं, क्या वजह होती है कि हम नहीं समझा पाते कि हम क्या चाहते हैं और वो नहीं समझ पाते कि वो क्या चाहते हैं। चलें, कहते हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, वो उसका इखलाक होता है, उसका बिहेवियर होता है, वो उसकी तरबियत होती है। चलिए, आपकी अगर थोड़ा से आप गुस्से वाले हैं या आप कुछ इस तरह के हैं कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है या आपसे बातें बर्दाश्त नहीं होती, तो ठीक है, वो आपकी तबीयत का हिस्सा है, लोग आपके साथ गुजारा कर लेंगे। लेकिन कभी ऐसी चीज़ें आएंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें आप में होंगी कि जो दूसरों के दिल दुखाने का बायस बने, जैसे आपको बेवजह आदत है किसी को जज करने की, आपको बेवजह आदत है किसी को टॉन्ट करने की, तो जनाब वहाँ पे असल मसला आता है और वो असल मसला कहते हैं तरबियत का होता है।

क्या ही खूबसूरत बात है ना कि जिसकी तबीयत खराब हो या तबीयत गुस्से वाली हो उसके साथ तो गुजारा हो सकता है, लेकिन उस इंसान के साथ गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता जिसकी तबीयत में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो। तो इस चीज़ का ज़रा सा ख्याल रखें कि हमारी छोटी छोटी बातें होती हैं, हमारे छोटे छोटे रवैये होते हैं जिससे हमारे अपने ही दूर हो जाते हैं, हमारे अपनों का ही दिल दुख जाता है। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, जैसे आपके कोई फ्रेंड है, पहले हम दोस्तों की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है मेरे ख्याल में जो सबसे हसीन है, और इसमें हम किसी को जानते भी नहीं होते, हमारा उनसे कोई खूनी रिश्ता भी नहीं होता, लेकिन एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, एक जज्बात का रिश्ता होता है, एक अपनायत का रिश्ता होता है, एक ऐसा हसीन रिश्ता होता है जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत अपनापन लगता है, ऐसे लगता है कि शायद ये हमारे बिछड़े हुए, ये हमारी रूह का बिछड़ा हुआ हिस्सा है। तो जनाब दोस्ती की हम बात करें तो हम देखते हैं कि दोस्त भी हमसे खफा होता है। अब दोस्तों के खफा होने में ऐसी कौन सी हमारी आदतें हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें खफा कर देती हैं, चलिए इन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका एक दोस्त है और वो बहुत एक्टिव इंसान है, मतलब वो आता जाता है, घूमता फिरता है, हर जगह वो जा सकता है और वो अकेले अपना काम कर सकता है, लेकिन एक दिन उसने आपको कह दिया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कि तुम मेरे साथ वहाँ चल सकते हो। और आपने क्या कहा? आपने कहा अरे तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, तुम तो हर जगह जा सकते हो, अकेले जा सकते हो, तो चले जाओ ना अकेले यहाँ पे ही, तुमने मुझे क्यों लेके जाना यहाँ पे, हर काम जब तुम अकेले कर सकते हो तो ये भी कर लो। जनाब अकेले सब कर लेते हैं, जिसका जो काम होता है वो उसको करना जानता है, लेकिन अगर कोई आपसे ये कहता है कि हाँ मेरे साथ चलो तो उसके साथ चले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि उसको आपकी वाकई में ज़रूरत हो। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हमसे कुछ कहते नहीं हैं, और वो इसलिए नहीं कहते कि उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर मैंने कुछ बताऊँगा तो ये कहेंगे अरे नहीं तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो फिर उनकी बात नहीं बनती। इसलिए कोशिश कीजिए ज़रा सा इस रवैये पे काम करें, बाज़ औक़ात आपकी ज़रूरत आपके दोस्त को होती है और आप समझ नहीं पाते। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं नाज़िया हसन की खूबसूरत आवाज़ में इस खूबसूरत से ट्रैक की तरफ।

कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। खलील साहब की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सी गजल आप सुन रहे थे, और इस गजल की जो फरमाइश है वो मुझे पिछले काफी प्रोग्राम से आ रही थी, और हमारे सुनने वाले हमें कह रहे थे कि जनाब हमें यह गजल सुनाई जाए। तो आज हमने अपने तमाम सामीन की फरमाइश को पूरा करते हुए खूबसूरत सी गजल उन्हें सुना दी। अच्छा, इसके अगर हम वर्ड पे गौर करें तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक हकीकत को बयान किया गया है, जिसे मैं अक्सर ये कहती हूँ कि शायरी जो होती है वो आपके उन जज्बों की जुबान होती है जो आप बयान नहीं कर सकते, तो आप शायरी के ज़रिए जो है वो कह देते हैं। और फिर जो मौसीकी होती है, जो आप इस तरह से गज़ल होती है या कोई सॉन्ग होता है, कोई ट्रैक होता है, तो वो उस शायरी को एक ज़िंदगी देता है। यानी मैंने और आपने पोइट्री पढ़ ली, ठीक है, हमने महसूस कर लिया, लेकिन जब उसी चीज़ को एक पेरहन में ढाला जाता है और कुछ इस तरह से उसका, जिसे कहते हैं ना, उसकी नमूद नमाइश कुछ इस तरह से की जाती है कि खूबसूरत आवाज़ हो और उसके साथ लाजवाल मौसीकी हो, तो जो एक आशकार बनता है, जो एक खूबसूरत सी चीज़ बनती है, वो बहुत ही हसीन मुजस्मा होता है, खुशगुन आवाज़ों का मजमूआ होता है, खूबसूरत शायरी का मजमूआ होता है, और वो दिलों पर असर करता है। तो ये गज़ल भी उन्हीं चंद गज़लों में से है जो कि पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर गज़लें हैं और हमारे सुनने वाले इनको बहुत पसंद करते हैं। इशफाक अहमद साहब ने क्या ही खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनके भी पाँव होते हैं, ये चलकर हमारे पास भी आ सकते हैं और चलकर हमसे दूर भी जा सकते हैं। तो ज़रा इस बात का ख्याल रखें कि रिश्ते हमारे पास कब आते हैं और हमसे दूर कब जाते हैं। एक ऐसी हकीकत है जिसे शायद हम बहुत ही, इसे कहते हैं ना, कभी कभार इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं बात करना चाहते, लेकिन हमें करनी चाहिए। आपका रवैये, मेरा रवैया, आपका रवैया, हम सबके रवैये जो होते हैं वो हमारी पहचान होती है। हम जो कहते हैं, हम जो लिखते हैं, हम बोलते हैं, वो ये बयां करता है कि इस इंसान का करेक्टर कैसा है, इसका ज़र्फ कितना है। अच्छा, तो बताते हैं कि रिश्ते कैसे हमारे पास आते हैं और दूर कैसे जाते हैं। एक बात होती है रिश्ता निभाना, एक बात होती है रिश्ता तोड़ देना। अब रिश्ता कब टूटता है? रिश्ता तब टूटता है जब आप उसको तोड़ना चाहते हैं। आप कहेंगे, अरे ये क्या बात कर रही है, रिश्ता तब टूटता है जब हम तोड़ना चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मैं तो नहीं तोड़ना चाहता। नहीं, यही तो बात है, हम हकीकत को नहीं कबूल करते। मैं नहीं मानूंगी मेरी गलती क्या है, आप नहीं मानोगे आपकी गलती क्या है। हम गलतियां मानने से डरते हैं, हम गलत होने से डरते हैं। हमें कोई गलत कह दे तो हम कहते हैं, अरे क्या कह रहे हो, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मुझे किस तरह से गलत कह सकते हो। तो जनाब, जब मानना ही नहीं है कि आप गलत हैं, जब ये मानना ही नहीं है कि आपकी गलती है, जब आपने अपने रिश्ते में उस चीज़ को, जिसको बर्दाश्त कहते हैं, जिसको तहम्मुल कहते हैं, जिसको कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, जिसको समझौता कहते हैं, वो करना ही नहीं है, तो रिश्ते कैसे बन के रहेंगे। हम उनको खो देते हैं अपने रवैयों की वजह से। मुझे गुस्सा आ गया, मेरा गुस्सा ऐसा है कि सब डर जाते हैं, और मैंने सबको डरा दिया, और उस डर में क्या हुआ, मेरे बहुत सारे अपने मुझसे दूर हो गए। और वो दूर क्यों हुए? वो इसलिए दूर हो गए कि वो थक चुके हैं मुझे बार बार मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर करके, बार बार मुझे बर्दाश्त करके। वो नहीं चाहते कि वो मेरा गुस्सा सहें। हाँ, बहुत दफ़ा हमारे अपने झुकते हैं हमारे रिश्ते बचाने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम उन्हें झुकने पे मजबूर भी करते हैं, लेकिन वो झुकते नहीं हैं, क्योंकि
एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें भी एहसास होता है कि नहीं, ये क्या बात हुई, हमेशा हम ही क्यों दबे, वो भी तो दबे, हमेशा हम ही को छोड़ें, वो भी तो छोड़ें। तो जनाब, ये चीज़ें ज़रूर जहन में रखिएगा। जहाँ पे अना आ जाती है ना, अना आप ये कह लीजिए कि अना तो रिश्तों की नेस्त नबूद कर देती है, उसको बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देती है। और ये बात इतनी ख़तरनाक है स्पेशली रिश्तों के लिए। अना आ गई भाई, अना भी ऐसी वैसी आई कि बस हमारा ताल्लुक उनसे नहीं है तो हमने बात ही नहीं करनी। अच्छा, अगर उन्होंने इस तरह का फंक्शन रखा हुआ है तो हमने तो जाना नहीं है, लेकिन हमारा फंक्शन आ रहा है तो हम चाहते हैं कि वो ज़रूर आएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो धाक है बैठी रहे और ख़ानदान में हमारा नाम बना रहे कि भाई हम तो नहीं गए लेकिन वो इतने हैं कि वो यहाँ आ गए। तो ये बातें ऐसी होती हैं जिन पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हमें झुक जाना चाहिए, हमें थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जब आपकी ज़ुबान मीठी होगी, आपका दिल नर्म होगा और आपका दिमाग जो है वो काफ़ी ठंडा होगा, तो जनाब आप बाकमाल बन जाएंगे। बाकमाल बनना बेहद आसान है, आपको ये तीन चीज़ें करनी है और यही तीन चीज़ें जो हैं वो आपके बहुत सारे रिश्ते बचा के भी रख सकते हैं। हम दोस्ती को भी बचा सकते हैं, हम उन रिश्तों को भी बचा सकते हैं जो सिर्फ हमारे साथ काम करते हैं, और उनको हम इसलिए खो देते हैं कि हमें ये होता है कि हमें बॉस की नज़रों में जो है ना वो 100% आना है, और इस चक्कर में चाहे जितने बेचारे इधर उधर आ रहे हैं उनको कैसे रास्ते से हटाना है वो हम जानते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और एक बात कि हालात जो होते हैं ना वो डिसाइड नहीं करते कि हम क्या हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हालात क्या हैं। हालात बुरे आते हैं लेकिन बुरे हालात हमें बुरा बनने पर मजबूर नहीं करते, वो बुरे होते हैं लेकिन वो हमसे हमारी अच्छाई नहीं छीनते, लेकिन हम अपनी अच्छाई जो है वो गंवा देते हैं उस बुराई की वजह से। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि बुराई पे अच्छाई, मतलब अच्छाई पे बुराई जो है वो कभी हावी ना हो। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रिश्तों को बचाने के लिए ज़रूरी है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपने कोई रिश्ते खफा कर दिए हैं उन्हें मना लीजिए, अगर आप सॉरी कह लेंगे, किसी का दिल दोबारा से जोड़ देंगे तो बड़ा ही सवाब का काम है। जल्दी से कीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, सुनते रहेगा प्रोग्राम दियारे गज़ल। और अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौड़ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।